गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आरजे अदनान आपके साथ है आपके आज की मॉर्निंग गुड करने के लिए। और आप सुन रहे हो दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा चाहिए होता है, और यही सहारा है MGM यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आज का दिन खास है क्योंकि आज MGM यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है। आज वो एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है जहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और इनोवेशन भी पनप रहा है। MGM यूनिवर्सिटी ने न जाने कितने स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि उन्हें एक बेटर ह्यूमन बींग, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक और एक सफल पर्सनैलिटी बनाया है। इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, आर्ट हो,

0: एंड सो स्पोर्ट्स हो या फिर जो भी फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी ने अपनी पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात तो MGM का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देना है। तो चलिए इस फाउंडेशन डे पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और बहुत सारी बातें होगी और मुलाकातें भी होगी। ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में ये नाम सिर्फ अपने मराठवाड़ा या महाराष्ट्र तक नहीं पूरे इंडिया में पूरे दुनिया भर में रोशन हो जाए, यही एक मनोकामना करते हैं। और हैप्पी फाउंडेशन डे to MGM University. Stay tuned.
1: Only on MGM 90.8 FM.

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक सवाल दिमाग में आया था, कब आखिरी बार अपने खुद को थैंक यू कहा था? अपने आप को कह रहा हूं मैं। माँ को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, ऑफिस में भी थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान ने हर मुश्किल में आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे कब अप्रिशिएट किया? खुद को, उस खुद को जो हर रात टूट कर भी अगली सुबह उठ जाता है, उस खुद को जिसने लोगों के तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ चुपचाप सुन लिया और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस खुद को जिसने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा सिर्फ इसलिए ताकि घर वालों को फिक्र ना हो। हम अक्सर अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं लेकिन अपनी हिम्मत का हिसाब कभी नहीं रखते। तो आज बस एक मिनट निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दिल से कहिए थैंक यू। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानी। थैंक यू हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए और थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। याद रखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे दुनिया भी उसे महसूस नहीं करेगी। इसलिए आज का चैलेंज सिंपल है, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ एक बार दिल से थैंक यू बोलकर देखिए, शायद आपको अपने अंदर एक नया दोस्त मिल जाएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, थेरेपी के बारे में मैम आपने बताया, बट आज भी हम देखते हैं कि लोग थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए थोड़ा कतराते हैं, तो ये नजरिया कब बदलेगा लोगों का और ऐसा क्यों है?
1: देखिए कैसा होता है ना, टैबू है ये। लोगों को लगता है कि अगर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग उन्हें पागल करार देंगे, बोलेंगे अरे ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। तो सोसाइटी को भी संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए कि वो, और क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से तो वो टैबू बना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम कर रहे हैं, आप और मैं जो कर रहे हैं, ये टैबू को हम खत्म करने की एक कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट कोशिश है। जब हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे अगर कोई गिर जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो हम बोलते हैं कि अरे हमारे घर में हमारे एक फैमिली मेंबर का पता है हम बोन टूट गया था तो हम डॉक्टर के पास ले गए उनको। वैसे हम साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जब ले जाते हैं हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लगता हमें। तो हम और आप जो

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in.

0: फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम। देखो यार, आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा अधिकार है, मेरा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना। सो आज के गाने की फरमाइश आई है संगम काळे के तरफ से इस गाने के लिए।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
0: आय हाय, आज फिर जीने की तमन्ना है, संगम जी ने फरमाइश की है। लगता है फिर से जीने की तमन्ना शुरू हो गई है, होनी भी चाहिए यार, मरने की नहीं बस जीने की तमन्ना रखी है। तो संगम जी की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। बाय द वे, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर बिंदास्त तुम्ही आम्हाला कॉल करून किंवा व्हॉट्सअप करून कळवू शकता 9359320080 या व्हॉट्सअप नंबरवर। नंबर नोट करून ठेवा, खूप कामाचा नंबर आहे 9359320080। अँड अभी फरमाइश पूरी करते हैं संगम जी की। स्टे ट्यून।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत road signal, विवेकानंद college road, सतीश motor के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको एन 5 छत्रपति संभाजी नगर.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: दोस्तों कहते हैं कि अगर सपनों को सच्चाई में बदलना हो तो हिम्मत और दूरदृष्टि चाहिए, और ऐसी सोच से जन्म हुआ MGM विद्यापीठ का। 2019 में इस विद्यापीठ ने एक छोटे से सफर की शुरुआत की और आज ज्ञान, नवाचार और संस्कार का एक विशाल केंद्र बन चुका है। MGM का मतलब है महात्मा गांधी मिशन। जी हाँ, बापू के आदर्शों से प्रेरित यह संस्था सिर्फ डिग्रियां नहीं देती बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाती है, चाहे फिर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, मैनेजमेंट, मीडिया, कल्चर, आर्ट्स और जितने सारे फील्ड है ना, तो वो सब फील्ड के अंदर MGM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे आगे है। अपने स्टूडेंट्स को वो मंच दिया है जहाँ से अपनी उड़ान भर सके, और सबसे खास बात है यहाँ का माहौल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और कल्चर से भी भरा हुआ है। आज फाउंडेशन डे पर हम सिर्फ MGM के इतिहास को याद नहीं कर रहे बल्कि उन हजारों स्टूडेंट्स की मेहनत, उन शिक्षकों की लगन और उस सपने को सलाम कर रहे जिसने छत्रपति संभाजी नगर को शिक्षा का एक नया स्रोत दिया है। MGM विद्यापीठ ने वो नाम कमाया जिस पर हर स्टूडेंट्स और हर पेरेंट्स को गर्व है। यहाँ के कैंपस में सिर्फ किताबों की खुशबू नहीं बल्कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर की भी चमक है। स्पोर्ट्स से लेकर इनोवेशन तक, स्टार्टअप से लेकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक, MGM के स्टूडेंट्स हर जगह आपको नजर आएंगे। इस शहर की मिट्टी में शिक्षा का ये पौधा साल पहले लगाया गया था, आज ये वटवृक्ष बनकर हजारों विद्यार्थियों को छाव और सहारा दे रहा है। तो चलिए आज के दिन हम सब मिलकर कहते हैं थैंक यू MGM, आपने हमारे शहर को नॉलेज हब बनाया और दुनिया भर में अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाकर उन्नति का एक नया रास्ता खोला। सो हैप्पी 6th फाउंडेशन डे MGM यूनिवर्सिटी एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

0: दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं MGM विद्यापीठ का फाउंडेशन डे। अब जरा जानते हैं कि आखिरकार MGM विद्यापीठ इतना खास क्यों है। MGM में है वो डाइवर्सिटी जो शायद ही कहीं और मिले। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जहां फ्यूचर इनोवेटर्स और टेक लीडर तैयार होते हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस जिसमें फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, क्लिनिकल रिसर्च और अलाइड हेल्थ कोर्स शामिल है। स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइंस और स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस जहाँ रिसर्च और इनोवेशन का असली संगम है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और डिजाइन जो कि क्रिएटिविटी और कल्चर की दुनिया को नई पहचान देता है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स फ्यूचर एंटरप्रेन्योर और कॉर्पोरेट लीडर्स की एक नर्सरी है जहाँ से नए नए कॉर्पोरेट लीडर्स पैदा होते हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस मॉडर्न दुनिया की प्रैक्टिकल जरूरतों को पूरा करने वाले कोर्सेज, साथ ही आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के डिपार्टमेंट जो सोसाइटी को समझने और बदलने का नजरिया देते हैं। डिजाइन, जर्नलिज्म, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस जैसे आधुनिक कोर्सेज भी यहाँ पूरे जोश के साथ पढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आर्ट के बारे में, चाहे फिर वो फिल्म बनाना हो, सिंगिंग सीखना हो, ड्रामा सीखना हो, थिएटर करना हो, ये सब चीजों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है MGM यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, MGM स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रिसर्च सेंटर्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे ग्लोबल लेवल पर वो अपना कॉम्पिटिशन पार कर पाए। और दोस्तों गर्व की बात यह है कि सिर्फ 6 साल में ही MGM विद्यापीठ ने हजारों स्टूडेंट्स को सफलता की राह दी। इंजीनियरिंग से लेकर आर्ट, मेडिकल से लेकर मैनेजमेंट, हर फील्ड में MGM के स्टूडेंट्स आपको आजकल देश विदेश में दिखाई देंगे। तो आज फाउंडेशन डे पर हम सब मिलकर सिर्फ एक ही बात कहेंगे, MGM यूनिवर्सिटी, यू मेक छत्रपति संभाजी नगर प्राउड एंड हैप्पी फाउंडेशन डे।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एक सवाल उठता है कि जो अपने शहर में भी हॉस्टल है वो सेफ है या अनसेफ है। दिल्ली में जो घटना हुई, हॉस्टल गिरा, तो उस बारे में तो हम सभी को पता होगा ही, और उसमें बहुत स्टूडेंट्स की जान चली गई है एंड बहुत सारे जख्मी हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं पढ़ाई के लिए, जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वो हॉस्टल सच में सेफ है या अनसेफ है। फिर चाहे हॉस्टल हो, पीजी हो, किराए का घर हो, जहाँ कई स्टूडेंट्स रहते हैं उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है क्या, उस बिल्डिंग का ऑडिट होता है क्या, ये भी अब प्रशासन ने एक बार चेक करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हॉस्टल है, स्पेशली कुछ कुछ गवर्नमेंट हॉस्टल तो इतने खराब हो गए हैं ना भाई, वहां पर जाने के बाद लगता है कि हम हॉस्टल में नहीं, किसी बाबा आजम के जमाने के किसी घर में आए हैं। एंड सफाई के नाम पर तो जीरो है। बाकी कुछ कुछ हॉस्टल का तो सालों साल मेंटेनेंस नहीं होता है, बिल्डिंग भी तकरीबन 30-40 साल पुरानी हो चुकी होती है और ऐसे बिल्डिंग्स में बच्चे रहते हैं। और कुछ हॉस्टल ऐसे है, प्राइवेट हॉस्टल हो या पीजी हो, जो कि रूम बहुत छोटी होती है, किराया बहुत ज्यादा वसूल किया जाता है, और जहाँ पर दो बच्चों की जगह होती है वहां पर चार बच्चे रहते हैं एक एक रूम में। और बिल्डिंग की बात क्या ही करें, एंड गवर्नमेंट की भी ऑफिशियल परमिशन वगैरह चाहिए होती है, तो ऐसे कुछ होती नहीं है किसी किसी हॉस्टल के पास। तो प्रशासन से एक ही दरख्वास्त है कि कुछ बड़ा हादसा अपने शहर में ना हो, उससे पहले ऐसे जो पीजी हॉस्टल बिल्डिंग से वहां पर एक बार चेक कीजिएगा कि इनका ऑडिट प्रॉपर है, वहां पर उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, कितने साल पुरानी वो बिल्डिंग है, एंड वहां पर रहना सेफ है या अनसेफ है। एक बार अपने प्रशासन ने पूरे शहर के ऐसे हॉस्टल भी चेक किए ना, तो बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो अभी वक्त है, तो इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स आप ये बताइएगा कि आप जिस हॉस्टल में रहते हो वो सेफ है या अनसेफ है। डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: MTM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: अक्टूबर हीट फिलहाल सितंबर में महसूस होने लगी है। तो बात कुछ ऐसी है कि शहर में ना तो बारिश का तो आता पता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ना एक और प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, वो है गर्मी का। पिछले कुछ दिनों से ना तो अपने शहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो पहले अक्टूबर हीट हुआ करती थी, तो वही अक्टूबर हीट अब सितंबर में महसूस होने लगी है। तकरीबन अपने शहर का टेम्परेचर पिछले 3 से 4 दिन में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ह्यूमिडिटी 59 से 60% तक पहुंच रही है अपने शहर में। और ये क्यों हो गया है, इसके पीछे रीजन है कि तकरीबन 30 से 35 दिन हो गए अपने शहर में बरसात हुई ही नहीं, अपने शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में बरसात हो ही नहीं रही। तो इसी वजह से ये अक्टूबर हीट जो है वो सितंबर में ही महसूस होने लगी है। अब हवामान विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि संडे से अपने शहर में अच्छी खासी बरसात हो सकती है, ऐसा उनका अंदाज है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये तो बरसात आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी बरसात है, लेकिन फिलहाल तो हम शहरवासियों को बरसात की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आई होप कि गणपति बाप्पा के आगमन से बरसात का भी आगमन हो जाए। होप सो। स्टे ट्यून ऑन MGM 90, स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

ऑफिसची वेळ झाली 5 वाजले, लॅपटॉप बंद केला, बॅग उचलली आणि मनात म्हटलं चला आता घरी जाऊन आयुष्य जगूया, असं तुम्ही पण प्लॅन करतायत ना. पण एवढ्यात बॉसचा मेसेज येतो, एक छोटस काम आहे तितकं करून जाणार, आणि छोटस काम म्हणजे 2 ते 3 तास लागतातच कारण आपल्या देशात कामाची वेळ संपते, पण काम काही संपत नाहीये. तर एका सर्वे मध्ये भारतातील तब्बल 24% कर्मचारी आठवड्याला 16 तास किंवा त्याहून जास्त काम करतायत, म्हणजे ओव्हर टाइम करतायत 24% कर्मचारी. यात तुमचा सुद्धा नंबर असू शकतो. आणि जवळपास 40% कर्मचारी दर आठवड्याला 6 ते 15 तास अनपेड एक्स्ट्रा काम करतायत. म्हणजे या सर्वेत असं आहे की भारतात जगातील सर्वात जास्त अनपेड वर्क केला जातो आणि ओव्हर टाइम सुद्धा केला जातो, म्हणजे पगार मिळतो कामाच्या वेळेचा पण काम 24 तास करावं लागते. आणि गमत म्हणजे काय माहिती का, आपण जर वेळेवर घरी जायचा प्रयत्न केला तर प्रश्न येतो काय रे आज काही काम नाही का, मतलब इंसान 8 घंटे काम करे और फिर वक्त पर बाहर निकलने के टाइम पर बॉस सवाल करता है बहुत जल्दी जा रहा है. भाई जल्दी थोड़ी जा रहा है, 9 से 5 का टाइम है, 5 बजे निकल रहा है. और कुछ कुछ चाटुकार एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कि 5 बजे उनका काम भले ही खत्म हुआ लेकिन निकलेंगे 5:30-6 बजे, क्योंकि इंप्रेशन उनको जमाना होता है और वो समझते कि थोड़ा एक्स्ट्रा रुकने से ना तो मैं मेरी वैल्यू बढ़ाऊंगा और बॉस की नजरों में हीरो बन जाऊंगा. भाई तुम तो 5 बजे कट लो, मैं 5:30-6 बजे तक रुकूंगा. करते कुछ नहीं, बस चाटुकारी करते हैं. तो ऐसे भी एम्प्लॉय ना तो इंडिया में बहुत है, इसीलिए ना तो सबसे ज्यादा खराब इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस हो चुका है. बट एक बात याद रखो, बॉस के लिए काम कभी खत्म नहीं होता लेकिन एम्प्लॉय के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. टुमारो इज अनदर वर्किंग डे, ये याद रखो. क्योंकि देखो भाई, आपकी जिंदगी बस 9 to 5 में नहीं है, उसके बाद भी आपकी कुछ पर्सनल जिंदगी है. बट एक बात तो है यार, पूरे दुनिया में इंडिया का ही वर्क कल्चर सबसे खराब है, जहां पर ओवर टाइम के ना पैसे दिए जाते हैं ना अप्रिशिएट किया जाता है. खैर क्या करें, आदत से मजबूर, जाऊं दिया. स्टे ट्यून्ड.

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का यह गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यह गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

0: सोचने हल्की था
1: अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा। वो थोड़ा डर लगा रहता है और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। कहना दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTEC, MTEC, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: positions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, अमृतनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: Karak!
1: NTM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NTM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8 FM।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही ट्यून केलंय एमजीएम रेडिओ 90.8 FM साथ है तो बात है। मी आहे आर जे भूषण। काय ना मित्रांनो, 2 दिवसापासून मी जरा गायब होतो म्हणजे थोडी तब्येत बरी नव्हती, त्यामुळे जरा आराम करत होतो। आणि काय ना, सध्या व्हायरलचं प्रमाण खूप वाढलंय, त्याच्यामुळे तुम्ही पण तुमची काळजी घ्याच। आता व्हायरल हे काहींना व्हायला आवडतं आणि काहींना वाटतं की व्हायरल होऊ नये। आता तुम्हाला काय वाटतं त्याचं एवढं टेन्शन घेऊ नका, कारण की शो सुरू झालाय विथ आर जे भूषण ओनली ऑन एमजीएम रेडिओ 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 906761200.
3: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
4: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
3: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
4: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होमिओपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
5: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
5: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: Admission contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in।

0: आउटफिट, विंटेज कॅमेरा इफेक्ट, दिसायला एकदम बॉलिवूड स्टार. ऍक्च्युली सध्या सोशल मीडियावरती एआयचा 80s फोटो ट्रेंड चांगलाच चर्चेत आहे. लोक काय करत आहे की आपला नॉर्मल फोटो एआयमध्ये टाकताय आणि एआय देतोय त्यांना एकदम रेट्रो मेकओवर. म्हणजे आपला चेहरा सेम, स्टायलिंग आणि फोटो असं की बघून तुम्हाला वाटेल की भाई ये किस डिकेड आ गए हम. आणि मला काय वाटतं हा ट्रेंड इतका इंटरेस्टिंग याच्यामुळे पण आहे कारण की आपल्याला नेहमीच वाटतं ना की यार मी जर या डिकेडमध्ये असतो तर कसं दिसत असतो. तसंच बऱ्याच लोकांना वाटत असेल ना की जर मी 80s असतो तर कसं दिसत असलो असतो. सो त्याचा आन्सर आपल्याला एआयकडून मिळत आहे. मग तुम्ही केलाय का तुमचा 80s अवतार, आणि जर केलाय तर कसा दिसतोय, एकदम हिरो का व्हिलन? चेक करून घ्या एकदा आणि ऐकत राहा आर जे भूषण सोबत एमजीएम रेडिओ 90.8 FM. साथ है तो बात है.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA. हियर यू गेट एक्सलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: एक सवाल दिमाग में आया था, कब आखिरी बार अपने खुद को थैंक यू कहा था? अपने आप को कह रहा हूं मैं। माँ को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, ऑफिस में भी थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान ने हर मुश्किल में आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे कब अप्रिशिएट किया? खुद को, उस खुद को जो हर रात टूट कर भी अगली सुबह उठ जाता है, उस खुद को जिसने लोगों के तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ चुपचाप सुन लिया और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस खुद को जिसने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा सिर्फ इसलिए ताकि घर वालों को फिक्र ना हो। हम अक्सर अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं लेकिन अपनी हिम्मत का हिसाब कभी नहीं रखते। तो आज बस एक मिनट निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दिल से कहिए थैंक यू। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानी, थैंक यू हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए और थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। याद रखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे दुनिया भी उसे महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आज का चैलेंज सिंपल है, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ एक बार दिल से थैंक यू बोलकर देखिए, शायद आपको अपने अंदर एक नया दोस्त मिल जाएगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
5: टूटा टूटा एक

0: बात तूने।
1: एक सवाल उठता है कि जो अपने शहर में भी हॉस्टल है वो सेफ है या अनसेफ है? दिल्ली में जो घटना हुई, हॉस्टल गिरा, तो उस बारे में तो हम सभी को पता होगा ही, और उसमें बहुत स्टूडेंट्स की जान चली गई है एंड बहुत सारे जख्मी हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं पढ़ाई के लिए, जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वो हॉस्टल सच में सेफ है या अनसेफ है? फिर चाहे हॉस्टल हो, पीजी हो, किराए का घर हो, जहाँ कई स्टूडेंट्स रहते हैं उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है क्या, उस बिल्डिंग का ऑडिट होता है क्या, ये भी अब प्रशासन ने एक बार चेक करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हॉस्टल है, स्पेशली कुछ गवर्नमेंट हॉस्टल तो इतने खराब हो गए हैं ना भाई, वहां पर जाने के बाद लगता है कि हम हॉस्टल में नहीं, किसी बाब आजम के जमाने के किसी घर में आए हैं, एंड सफाई के नाम पर तो जीरो है। बाकी कुछ कुछ हॉस्टल का तो सालों साल मेंटेनेंस नहीं होता है, बिल्डिंग भी तकरीबन 30-40 साल पुरानी हो चुकी होती है और ऐसे बिल्डिंग्स में बच्चे रहते हैं। और कुछ हॉस्टल ऐसे है, प्राइवेट हॉस्टल हो या पीजी हो, जो कि रूम बहुत छोटी होती है, किराया बहुत ज्यादा वसूल किया जाता है, और जहाँ पर दो बच्चों की जगह होती है वहां पर चार बच्चे रहते हैं एक एक रूम में, और बिल्डिंग की बात क्या ही करें, एंड गवर्नमेंट की भी ऑफिशियल परमिशन वगैरह चाहिए होती है, तो ऐसे कुछ होती नहीं है किसी किसी हॉस्टल के पास। तो प्रशासन से एक ही दरख्वास्त है कि कुछ बड़ा हादसा अपने शहर में ना हो, उससे पहले ऐसे जो पीजी हॉस्टल बिल्डिंग्स है वहां पर एक बार चेक कीजिएगा कि इनका ऑडिट प्रॉपर है, वहां पर उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है क्या, कितने साल पुरानी वो बिल्डिंग है, एंड वहां पर रहना सेफ है या अनसेफ है। एक बार अपने प्रशासन ने पूरे शहर के ऐसे हॉस्टल भी चेक किए ना, तो बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो अभी वक्त है, तो इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स आप ये बताइएगा कि आप जिस हॉस्टल में रहते हो वो सेफ है या अनसेफ है। डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का ये गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यही गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

0: लालच नाल गीता
1: अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा। वो थोड़ा डर लगा रहता है और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। कहना दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: मोहन और सीमा बचपन के दोस्त थे, दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे, हर छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली करते थे। एक दिन मोहन ने सीमा से कहा, क्या तुम कभी मुझे बिना जाने बिना पूछे अपना हाथ थाम पाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे हमेशा सच बोलोगे तो मुझे कोई शक नहीं होगा। वो दिन आया जब मोहन को पता चला कि उसे सीमा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था अपनी दोस्ती खोने से, जैसे आप लोग भी डरते हो ना आपकी दोस्ती खोने से। फिर एक शाम आई जब मोहन ने सीमा को गुलाब का फूल दे दिया और कहा, तुमसे ज़्यादा खास कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सीमा ने गुलाब का फूल लिया और बस इतना कहा, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो

0: ओक्टूबर हीट फिलहाल सितंबर में महसूस होने लगी है। तो बात कुछ ऐसी है कि शहर में ना तो बारिश का तो आता पता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ना एक और प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, वो है गर्मी का। पिछले कुछ दिनों से ना तो अपने शहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो पहले अक्टूबर हीट हुआ करती थी, तो वही अक्टूबर हीट अब सितंबर में महसूस होने लगी है। तकरीबन अपने शहर का टेम्परेचर पिछले 3 से 4 दिन में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ह्यूमिडिटी 59 से 60% तक पहुंच रही है अपने शहर में। और ये क्यों हो गया है, इसके पीछे रीजन है कि तकरीबन 30 से 35 दिन हो गए अपने शहर में बरसात हुई ही नहीं, अपने शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में बरसात हो ही नहीं रही। तो इसी वजह से ये अक्टूबर हीट जो है वो सितंबर में ही महसूस होने लगी है। अब हवामान विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि संडे से अपने शहर में अच्छी खासी बरसात हो सकती है, ऐसा उनका अंदाज है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये तो बरसात आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी बरसात है, लेकिन फिलहाल तो हम शहरवासियों को बरसात की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आई होप कि गणपति बाप्पा के आगमन से बरसात का भी आगमन हो जाए। होप सो। स्टे ट्यून ऑन MGM 90, स्टे ट्यून।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

ऑफिसची वेळ झाली, 5 वाजले, लॅपटॉप बंद केला, बॅग उचलली आणि मनात म्हटलं चला आता घरी जाऊन आयुष्य जगूया. असं तुम्ही पण प्लॅन करतायत ना. पण एवढ्यात बॉसचा मेसेज येतो, एक छोटंसं काम आहे तितकं करून जाणं. आणि छोटंसं काम म्हणजे 2 ते 3 तास लागतातच, कारण आपल्या देशात कामाची वेळ संपते पण काम काही संपत नाहीये. तर एका सर्वेमध्ये भारतातील तब्बल 24% कर्मचारी आठवड्याला 16 तास किंवा त्याहून जास्त काम करतायत, म्हणजे ओव्हर टाइम करतायत 24% कर्मचारी. यात तुमचा सुद्धा नंबर असू शकतो. आणि जवळपास 40% कर्मचारी दर आठवड्याला 6 ते 15 तास अनपेड एक्स्ट्रा काम करतायत. म्हणजे या सर्वेत असं आहे की भारतात जगातील सर्वात जास्त अनपेड वर्क केला जातो आणि ओव्हर टाइम सुद्धा केला जातो. म्हणजे पगार मिळतो कामाच्या वेळेचा, पण काम 24 तास करावं लागते. आणि गमत म्हणजे काय माहिती का, आपण जर वेळेवर घरी जायचा प्रयत्न केला तर प्रश्न येतो काय रे आज काही काम नाही का. मतलब इंसान 8 घंटे काम करे और फिर वक्त पर बाहर निकलने के टाइम पर बॉस सवाल करता है बहुत जल्दी जा रहा है. भाई जल्दी थोड़ी जा रहा है, 9 से 5 का टाइम है, 5 बजे निकल रहा है. और कुछ कुछ चाटुकार एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कि 5 बजे उनका काम भले ही खत्म हुआ लेकिन निकलेंगे 5:30-6 बजे, क्योंकि इंप्रेशन उनको जमाना होता है और वो समझते कि थोड़ा एक्स्ट्रा रुकने से ना तो मैं मेरी वैल्यू बढ़ाऊंगा और बॉस की नजरों में हीरो बन जाऊंगा. भाई तुम तो 5 बजे कट लो, मैं 6:45 बजे तक रुकूंगा. करते कुछ नहीं, बस चाटुकारी करते हैं. तो ऐसे भी एम्प्लॉय ना तो इंडिया में बहुत है. इसीलिए ना तो सबसे ज्यादा खराब इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस हो चुका है. बट एक बात याद रखो, बॉस के लिए काम कभी खत्म नहीं होता लेकिन एम्प्लॉय के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. टुमारो इज अनदर वर्किंग डे, ये याद रखो. क्योंकि देखो भाई, आपकी जिंदगी बस 9 to 5 में नहीं है, उसके बाद भी आपकी कुछ पर्सनल जिंदगी है. बट एक बात तो है यार, पूरे दुनिया में इंडिया का ही वर्क कल्चर सबसे खराब है, जहां पर ओवर टाइम के ना पैसे दिए जाते हैं ना अप्रिशिएट किया जाता है. खैर क्या करें, आदत से मजबूर. जाऊं दिया, स्टे ट्यून्ड.

0: टॉक अबाउट 90s वाला दौर जिसको हम कभी भूल ही नहीं पाते। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो 90s का जो सफर होता है ना, वो हर किसी को अपना सा लगता है। उसकी यादें हो, वो बचपन हो, वो मासूमियत हो, और 90s में जो कुछ हमने धिंगाना मस्ती की थी और जिस तरीके से हमने अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताया था, मोहब्बत की थी, लेटर लिखे थे, मतलब कलम से लेकर फ़ोन तक का सफ़र 90s वाले बच्चों ने देखा है, और जो कि आज बड़े हो चुके हैं, जो मिलीनियर्स इस रूप में जिन्हें जाना जाता है। बट दिल से ना तो वो 90s की यादें तो कभी नहीं निकलती ना, चाहे फिर गाने हो, फिल्म्स हो, कोई एक्टर हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मैगजीन हो, या बस सुकून के वो लम्हे हो। तो उन्हीं बातों को हम ताज़ा करते हैं अपने एक स्पेशल शो में, जो कि संडे को होता है सुबह ठीक 9 से 11, जिसका नाम है
1: नाइंटीज की बातें। याद आती हैं वो बातें।
0: जी हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ वो शो। तो वो शो सुनना ना बोले। कब सुनोगे आप? हर संडे सुबह 9 से 11 बजे तक मॉर्निंग के टाइम पर। और हाँ, इसी के साथ 90s की आपकी भी क्या कुछ यादें थी, कुछ मोमेंट्स हो गए जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर। बाकी संडे सुबह ठीक 9 बजे 90s वाले दौर में आइएगा जरूर। मैं तो रहूंगा ही, बाकी मुस्कान की चमकान के साथ सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.8 FM.
3: Saat bhai saat, bhai ka saat, jee bachche safar, pata rani chadesha.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।